0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ,
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले

मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के दो मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सजरी सवेर।
5: बिल्कुल साथियों, समा 7:14 ते 44 सैकेंड जी, आकाशवाणी FM बठिंडा यानी कि 101.1 MHz ते दोस्तों जारी है प्रोग्राम सजरी सवेर दा इस सफर। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ, ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।

0: हाल है। गुप्ता जी,
1: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
1: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
3: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
4: कट व्याज ते लोन चाहिदा, ओ भी ऐप तो, वाह
5: फसिया। अनजान ऐप्स तो बचो,
6: RBI कहंदा है
5: जानकार बनो सुचेत रहो।
1: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85%

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: आकाशवाणी FM बठिंडा, FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम सजरी सवेर दा।
5: समा साथियों 7:50 ते

0: कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में घर में मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि

0: देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
1: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
2: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों

0: के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने ये घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में दो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने ये भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक दो मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉर्थ फार्क की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satyendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में

0: विस्तृत निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर रवाना हो गई हैं। वे वहां चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 10 परिसरों पर तलाशी ली है। निदेशालय ने बताया है कि ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। गोवा में क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला है। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। उधर भारतीय महिला टीम ने कल शाम दूसरे ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी। भारत अपने अंतिम पूल मैच में कल इंग्लैंड से खेलेगा। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,919 अंक पर और निफ्टी 100 अंक गिरकर 24,053 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये नाना नाना कहने की आदत ही तो है जनाब, जिसकी वजह से ना हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो उम्र कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें पता है कि उनमें उनमें अटूट इच्छा शक्ति है, और साथ ही साथ वो है खान, किस चीज की खान, नहीं आमिर खान, नहीं शाहरुख खान, नहीं टैलेंट की खान, और इसी वजह से अभी तक अपना दमखम साबित कर रहे हैं। अब अपने सनी देओल साहब को ले लीजिए जनाब, बंटवारा 1947 में नजर आ रहे हैं हमारे सनी देओल साहब। बंटवारा की बात की जाए तो ये राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म है, और अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अब तक ये फिल्म भारत में कमा चुकी है 30.76 करोड़ रुपए, और अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो 43 करोड़ से ऊपर ये फिल्म बना चुकी है, यानी कि कमा चुकी है। बना तो तब चुकी चुके थे जनाब जब आप इसे देखने के लिए एकदम आतुर हुए थे, तो 6 दिनों का ये आंकड़ा है जिस से हमने आपको रूबरू करवाया है। लेकिन कहते हैं कि हम जब भी ना रेस में दौड़ने के लिए तैयार होते हैं और पूरे जोश के साथ निकलते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि भाई हमारे साथ कोई और भी है, कोई और भी है जो हमें पछाड़ने के लिए एकदम तैयार है। एकदम तैयार हो गई है आवारा पंटू, और पछाड़ भी रही है। आवारा पंटू इमरान हाशमी की ये फिल्म, इमरान हाशमी बहुत समय के बाद स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, इससे ये ही साबित हो रहा है कि इमरान हाशमी का जादू ना अब भी चलता है। क्या कुछ है खास इस फिल्म में जो आप सभी सिनेमा घरों की तरफ ऐसे दौड़े हैं, ऐसे दौड़े हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या है इस फिल्म में, क्या इमरान हाशमी खुद वजह है? ये तो आप बताएंगे और हम भी इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने 144 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसने, यानी कि हमारे देश में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, और ये इमरान हाशमी की पहली ऐसी सोलो लीड फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में एंटर हुई है। अब ऐसा क्या हो गया, मैं तो ये जानने के लिए एकदम बेहाल हो रही हूं कि ये इमरान हाशमी का जादू इतने समय बाद भी बरकरार है। क्या इसकी स्टोरी लाइन, आवारापन टू की स्टोरी लाइन पिछली वाली से भी ज्यादा खतरनाक है, या फिर आप जो है फैन सच्चे और बड़े वाले हैं, ये तो आप ही बताएंगे और हम भी इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आपका और हमारा प्यार जो है ना यूं ही बरकरार रहे, और प्यार को बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है कि समय समय पर तोहफे दिए जाएं। तो ये अगला नजराना हमारी ओर से आपके लिए।

समय हो गया 11:15 में हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त गीते का होने वाला प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और बॉलीवुड ट्रेल्स में हम उन तमाम फिल्मों को बहुत ज्यादा याद करते हैं जिन्होंने अपने लिए ना एक मुकाम हासिल किया, क्योंकि उन फिल्मों को जितनी मर्तबा देखा जाता है सच मानिए वो जिंदगी का ना फलसफा बन जाता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जब भी फिल्म आई थी 2011 में उसके बाद से हमारी टैगलाइन ही मिल गई, जी लो जिंदगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। और इसी को हमने अपनी टैगलाइन बनाकर अपने जीवन जीने के फलसफे को ही बदल दिया। अब कुछ फिल्में ऐसी ही होती हैं, उनकी स्टोरी लाइन तो होती ही होती है अच्छी है, साथ ही साथ जो फिल्म का टाइटल होता है वो हमारी जुबान पे चढ़ जाता है। जब जुबान पे चढ़ जाती है ना कोई बात, बाय गॉड कसम से फिर तो वो जबान से उतरने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है बस इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए सोते हैं, इसी के लिए खाते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते हैं ऐसा होता है फिर वो चाहे इंसान ही क्यों ना हो। और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके अगर कैरेक्टर्स को याद किया जाए, आय हाय हाय, इन तीनों की दोस्ती ना बा कमाल रही है ना, बा कमाल थी इन दोनों तीनों की दोस्ती। अर्जुन कबीर इमरान, अब आप समझ गए हैं कि मैं किनकी बात कर रही हूँ, फरहान अख्तर, अभय देओल और ऋतिक रोशन की जी। और इस फिल्म के गानों ने तो धमाल ही मचा दिया था। आज भी हम इस फिल्म के गानों को सुनते हैं, हमारे रेडियो स्टेशन पर प्ले करते हैं। अब मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कह रही हूँ और कहने के साथ साथ आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि अगर इस फिल्म का सीक्वल आ जाए तो क्या आप देखने जाएंगे? आप कहेंगे जनाब ये तो सवाल ही गलत है बिल्कुल गलत सवाल है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये बात एकदम सच है। और अगर जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है, बल्ले बल्ले। तो जोया अख्तर जिन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया था, उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल लेकर आ रही है, यानी

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस पर दोबारा काम करनी है। क्या बात है। तो हम बेताब हैं, आप भी बेताब हैं। अब 15 साल इस फिल्म को हो चुके हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब 15 साल बाद फिर जिंदगी जीने का अगर मौका मिल रहा है जनाब, तो क्यों नहीं जिएंगे, बिल्कुल जिएंगे और इस फिल्म को देखेंगे। वैसे ये रूमर्स तब से पहले शुरू हुई जब 2025 में एक एडवर्टीजमेंट में ऋतिक, अभय और फरहान नजर आए, और वहीं से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी जरूर इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है। और अब तो जोया अख्तर ने भी कंफर्म कर दिया है। तो हम करते हैं इंतजार, और इंतजार ही इंतजार में हम पूछ लेते हैं सेनोरिटा से कि वो ये बात सुनने के बाद क्या फिर से जिंदगी जीने के लिए तैयार है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो?

0: अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सावधान, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। कैशबैक पाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, रेट करो पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में पैसे बनाओ, आईपीओ अलॉटमेंट कंफर्म पाओ, महंगी चीजें सस्ते में पाओ, तत्काल लोन पाओ, ऐसे दावों के झांसे में ना आए। साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
3: शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
4: गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
5: एपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कहुनियाल। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना बॉलीवुड ट्रेल्स, जहां वो समय आ गया है जब आपसे हम पूछते हैं वो सवाल जिसके जरिए आप बन जाते हैं बॉलीवुड सरताज। तो सवाल आज का हर बार की तरह बहुत ज्यादा आसान, आपको हमें बताना है कि आवारापन टू की बात नहीं कर रही हूँ, आवारापन कौन से साल में रिलीज हुई थी। है ना, कितना आसान सवाल। देखा, मुझे ना हमेशा अपने ऊपर बहुत गर्व होता है कि मैं आसान आसान बातें करती हूँ और जीवन में ना आसान करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब तुरंत हमें लिख भेजिए 9868107070। इस जादुई नंबर पर आपके पैगाम तुरंत पहुंचते हैं। तो जल्दी से हमें लिख भेजिए कि आवारापन इस फिल्म को कब रिलीज किया गया था, या ये कह लीजिए कि आवारापन कब रिलीज हुई थी, आपने कौन से साल में देखी थी, फर्स्ट शो फर्स्ट देखा था कि नहीं देखा था, बता दीजिए हमें, क्योंकि हमें आपके सच्चे वाले दोस्त और सच्चे वाले दोस्तों के साथ सच्ची सच्ची बातें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्योंकि जब सच्चे दोस्तों से मिला जाता है तो यही कहा जाता है कि हाँ तू है, हाँ तू है, बस तू ही है।

और समय मध्यम मध्यम धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रहा है। समय हो गया 11:30। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कहानियाल, और बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सुन रहे हैं चटपटी मसालेदार खबरें जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप फिल्मों से, सिनेमा से करते हैं बहुत ज्यादा मोहब्बत। और एक फिल्म जिसका इंतजार सबको है वो इसलिए है क्योंकि क्योंकि क्योंकि जब कोई निर्देशक एक फिल्म लेकर आता है तो एक छाप छोड़ जाता है। अब वो छाप आपके दिलों में किस तरह से पड़े वो तो निर्भर करता है कि आपका दिल कैसा है। सारा कसूर तो दिल का ही होता है। अब राय बदल सकती है लेकिन एक छाप जरूर मन में रह जाती है कि इनके निर्देशन में तो ऐसी ही फिल्में बनती है। अब जिस निर्देशक का नाम मैं ले रही हूं उनका नाम सुनने के बाद उनकी फिल्म आपके जुबान पर खुद ब खुद आ जाएगी। मैं बात कर रही हूं संदीप वेंगा रेड्डी की। जी हाल ही में यानी कि कुछ समय पहले इनकी फिल्म आई थी एनिमल। बहुत से लोगों ने बहुत सी प्रतिक्रियाएं दी लेकिन सिनेमा घरों में जिस तरह से आप उमड़े हैं घूमड़े हैं घूमड़े इसलिए कह दिया कि घूम घूम कर आप पहुंचे हैं, उससे ये सब साबित होता है कि भाई कुछ दिल में रहा होगा कि कैसी है ये फिल्म एनिमल। आपने सराहा भी, बहुत से लोगों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया। खैर ये तो व्यक्तिगत राय होती है जो फिल्म को देखने के बाद आप दर्शक अपने दिलों में रखते हैं, उसे अपने साथ लेकर चलते हैं और उसके बेसिस पर ही आगे निर्धारित करते हैं कि इस निर्देशक की फिल्म या इस एक्टर की फिल्म आगे देखनी है कि नहीं देखनी है। अब हमारे जो साहब हैं यानी कि संदीप वेंगारेड्डी बहुत समय से काम कर रहे हैं एक फिल्म में, फिल्म के लिए, और वो फिल्म है स्पिरिट। बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है इस फिल्म का। तृप्ति डिमरी और प्रभास इस फिल्म में नजर आएंगे लेकिन हुआ ये है कि ये फिल्म जो मार्च 2027 में रिलीज होनी थी अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ये जून 2027 में रिलीज होगी। तो आप अब अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, बहुत सारा समय है आपके पास और अगर मन करे ना तो पुरानी फिल्म एक बार दोबारा देख लीजिए यानी कि एनिमल। हालांकि एनिमल और स्पिरिट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों का

प्लॉट, दोनों की स्टोरी लाइन, दोनों के एक्टर्स अलग अलग हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी निर्देशक हो, उनका अपना एक स्टाइल होता है और उस स्टाइल की वजह से वो जाना जाता है और उस स्टाइल की वजह से ही हम उसे फॉलो करते हैं, वो हमारा प्रिय हो जाता है या फिर हम ये कहते हैं कि नहीं अब और नहीं फिलहाल। ये नगमा आपके लिए अरिजीत सिंह की आवाज में एनिमल फिल्म का ये पहुंच रहा है, गाना प्यारा है। जब भी अरिजीत के गानों की बात की जाती है तो हर गाना अपने आप में ना मुकम्मल सा लगता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना दिल निकाल कर इस गाने के जरिए हमारे दिलों तक भेजा है।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
6: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
5: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले मोहनलाल, इनकी फिल्में बाकमाल होती हैं, इनकी एक्टिंग काबिले तारीफ होती है और जब भी ये अभिनय करते हैं तो किसी भी किरदार को जीवंत कर देते हैं। जी, 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है और 350 फिल्मों से अधिक में इन्होंने काम किया है। हम तो बोलेंगे इन्होंने 350 फिल्मों में खुद को जिया है। जैसा कि हमने कहा कि अपने किरदारों को हमेशा जीवंत करते हैं और जीवंत वही करता है जो उस किरदार की तह तक पहुंच जाता है। अब खुशखबरी ये है मोहनलाल जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए कि अपने मोहनलाल साहब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात फिल्मों में ये नजर आने वाले हैं। यानी कि इन्होंने अपनी 7 अपकमिंग फिल्म्स का एक साथ ऐलान कर दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए। अब देखिए, 7 फिल्मों में ये नजर आने वाले हैं कुछ समय बाद। हालांकि प्रोडक्शन में बहुत समय लगता है, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि अच्छे कलाकार हैं और साथ ही साथ कितनी मेहनत करने वाले हैं कि आप इन्हें एक साथ इतनी सारी फिल्मों में देखेंगे। तो खुशखबरी ही खुशखबरी है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि अपने दिन को जो है ना बहुत बहुत खूबसूरती के साथ जीते हैं और जिस इंसान को अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार होता है उसका हर एक दिन ना केवल उसके लिए लेकिन उन सभी के लिए जो उसे मोहब्बत करते हैं बहुत ही खूबसूरत होता है। क्योंकि हर दिन हम अपने लिए जी रहे हैं और हर दिन हम कुछ ऐसा दे रहे हैं कि लोग हमें याद कर रहे हैं।

भाई दिन तो हमारा हर यानी कि हर दिन हमारा बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरती के साथ हम इसे जीते हैं। और जो लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं और अपने काम को पूछते हैं, उनके लिए तो हर दिन बेहतरीन है। और वो लोग जो दूसरों को सराहाते हैं पल पल में, वो और भी ज्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी की तारीफ करना दुनिया का ना मुश्किल काम है, लेकिन अगर दिल से कोई बात की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। अब आवारापन टू इस फिल्म की अगर बात की जाए, बहुत प्यार आप इस फिल्म को दे रहे हैं और इसी वजह से इस फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था, तो 144 करोड़ रुपए ये फिल्म कमा चुकी है वर्ल्ड वाइड, और भारत में 100 करोड़ का क्लब यानी कि इसमें एंटर कर चुकी है फिल्म। अब क्या खास बात है इस फिल्म में भाई? भाई आवारापन की तरह आवारापन टू भी सुपर डुपर हिट इसलिए जा रही है क्योंकि इसमें इमरान हाशमी है। हाँ, सच कह रही हूँ, मेरे हंसी पर मत जाइए आप, क्योंकि आप इस बात के सबूत हैं। अब जिस तरह के किरदार इमरान हाशमी प्ले करते हैं, वो अपने आप में बहुत अलग होते हैं और इनकी अलग तरह की एक्टिंग ही इनको एकदम मुख्तलिफ बनाती है। इस फिल्म में इमरान हाशमी का किरदार और साथ ही साथ इस फिल्म के गाने बहुत बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जैसे कि आवारापन, जब आपने इस फिल्म को देखा और इसके नगमों को आप आज भी याद करते हैं, तो इस फिल्म की भी यही खास बात है कि इसके गाने बहुत प्यारे हैं। हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस फिल्म में ना बहुत ज्यादा दर्द है। दर्द है किसी को पाने का, दर्द है किसी को खोने का। ज्यादा इस फिल्म के प्लॉट के बारे में जिक्र नहीं करूंगी। चाहती हूँ कि आप देखें, अगर आप ऐसी फिल्में देखने के शौकीन हैं और इमरान हाशमी को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो देखिए। तो दर्द ही दर्द है और कभी कभी दर्द भी ना मजा देता है। अब मजा बस उतना ही रखेगा कि वो आप को ज्यादा परेशान ना करे, आपको टेंशन ना दे, पर जीवन के अलग अलग पहलुओं को जीना जरूरी है, इसलिए फिल्में भी हमें ऐसा ही आईना खाती हैं जहां वो हमें खुद से मिलवाती हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो ऐसी फिल्म देखकर चेहरे पर खुशी आ जाती है, जब दर्द भरी फिल्में देखते हैं तब भी दिल ये सोचने पर मजबूर होता है, जो हुआ सो हुआ, अब जिंदगी आगे जी ले हम। तो इमरान हाशमी की ये फिल्म आगे कितना धमाल मचाती है, इस बात का सबूत अब आप देंगे जब आप पहुंचेंगे सिनेमा घर। फिलहाल आपसे यही दरख्वास्त है कि ना आप जिंदगी के जो अलग अलग पहलू हैं ना, उनसे खुद को रूबरू करवाते रहिए। हाँ, ज्यादा परेशान होना जिंदगी का फलसफा नहीं है। जिंदगी ये कहती है कि मुझे बड़े प्यार से जियो, बस अपना हाले दिल ना एक दूसरे को सुनाते रहो, बताते रहो। फिलहाल आपके लिए बहुत ही प्यारा ट्रैक प्ले कर रही हूँ यहाँ पर, मदर टू से हर्षित सक्सेना की आवाज में गाना है, इमरान हाशमी की ही फिल्म है, मुझे बहुत पसंद है। तो जब मुझे पसंद, वो आपके लिए नजराना।

0: और समय हो गया 11:52। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कहनियाल। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में वो घड़ी आ गई जब हमें मिल जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज और हम करते हैं उनसे बात। तो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त है भुवनेश्वर नेतम छत्तीसगढ़ से। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप भुवनेश्वर जी?
1: बहुत बढ़िया मैडम।
0: अच्छा, पहले ये बताइए कि आप हमारा शो सुन रहे हैं उसके साथ साथ कुछ काम भी कर रहे हैं?
1: जी, खेती बाड़ी है, अभी गाय के लिए घास भी काट रहा था मैडम।
0: वाह, क्या बात है, मतलब दिनचर्या चल रही है, काम चल रहे हैं रोजमर्रा के, और साथ साथ एफएम रेडबो सुना जा रहा है।
1: जी,
0: जी बहुत बढ़िया। तो हमने आज सवाल पूछा कि आवारापन, आवारापन

0: जो अब रिलीज हुई है कुछ दिनों पहले, आवारापन, ये जो फिल्म है ओरिजिनल्स, ये कब रिलीज हुई थी, कौन से साल में हुई थी?
1: ये 29 जून 2007 में रिलीज हुई थी
0: वाह क्या बात है, तो आपने देखी है फिल्म ये?
1: जी। याद नहीं है, मैं देखा तो
0: याद
1: नहीं।
0: नहीं है पर देखी जरूर होगी बिल्कुल। और इसके
1: जी
0: गाने फिल्म के बहुत खूबसूरत हैं, और ये जो दूसरी फिल्म आई है इसके गाने भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पिया घर आए। इस फिल्म की धुन, इस गाने की धुन जो है केवल 20 मिनट में बना दी गई, और बाकी के जो पुराने गाने हैं उन गानों को भी एक नए अंदाज से पेश किया गया है, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी को
1: जी
0: बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है। तो यूएसपी है इस फिल्म के गाने आवारापन टू
1: जी
0: के। जी बहुत बहुत बधाई आपको आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें, यूं ही बरसाते रहें, और यूं ही आप हर बार हमारे शो में शिरकत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो
0: हेलो।
1: जी, इस वक्त मेरे साथ है रघुनाथ मेहता मैम, उत्तम मेहता
0: हाँ,
1: और
0: आपके परिवारजन आपके
1: उत्तम
0: साथ
1: मेहता
0: हैं
1: जी,
0: जी?
1: और
0: सब
1: मेरे भाई प्रेमचंद नेता हम साथ में रेडियो सुन रहा है। जी
0: वाह क्या बात है, सबको ढेरों शुभकामनाएं। बस आप यूं ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें, रेनबो सुनते रहें, और अपना प्यार हमें देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो हमारे आज के बॉलीवुड सरताज छत्तीसगढ़ से भुवनेश्वर नीतम, और मोहब्बत बहुत सारे दोस्तों ने भेजी है सही जवाब भेजकर। सलीम मलिक मेरठ यूपी से, गुड मॉर्निंग भेजा है किसी ने, नाम नहीं लिखा, खैर कोई बात नहीं। अगला संदेश हम तक पहुंचा है अनवरुल खान रोतमा छत्तीसगढ़ से, हमारे पास ये संदेश है। डॉली का हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपके प्यार के लिए। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से संदेश है। सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल 2007, इन्होंने सही जवाब लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे पास संदेश अगला है 2007 सही संदेश। कान्हा मेरठ से संदेश है हमारे पास। भरत शर्मा का यमुना नगर से संदेश है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। अच्छा जी, जयनंद त्यागी मोदी नगर 2007 सही जवाब आपने भेजा। अगला संदेश हम तक पहुंचा है मनोज कुमार का भवाना हरियाणा से, सही संदेश आपका आया है। एक मित्र ने और संदेश भेजा है, विवेक का है मुझे लगता है मेरठ से संदेश। हमें भेजने वालों में दोस्त हैं दिनेश नाहर सिंह अमर कॉलोनी गोकुलपुरी से, और संदेश आया है गौतम कुमार का समस्ती बिहार से। दोस्त बहुत सारे हैं हमें जो प्यार भेज रहे हैं, हरीश गौड़ का मेरठ से, अरुण सेन का जिला मध्य प्रदेश से, विनीत कुमार का बदायूं उत्तर प्रदेश से। आप सभी को दिल से प्यार और मोहब्बत। धर्म भाटिया जी का संदेश आया है, सही जवाब आपने भेजा है। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से, कृष्ण कुमार मिश्र ने हमें संदेश भेजा है दिल्ली से, राजीव कुमार मेरठ से, निकिता पारेकर पुणे से, रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से। आप सभी दोस्त बहुत प्यार भेजते हैं। और दानिश का खतौली से, राजकुमार के संतानी का हमारे पास महाराष्ट्र संदेश आया है, प्रवीण चौहान का संदेश आया है। आप सभी दोस्तों ने सही सही जवाब भेजे हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचाया है, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो बस दिल से हर दिन को मनाते रहिए, और हाँ ये जो फिल्में हैं, जो गीत हैं, ये जो कलाकार हैं, ये कहीं ना कहीं हमें जीने का एक रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन में रंग भरते हैं। हमारा मूड कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन बेहतरीन नगमे सुनने के बाद दिल ऐसा महसूस करता है कि आज बात बन गई। तो फिलहाल आपकी दोस्त गीतिका आपसे यहाँ पर इजाजत लेती है, होगी मुलाकात आपसे 1 बजे के बाद, और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप फोटोग्राफी में करियर बना सकते हैं। उमेश मेहता जी हमारे साथ होंगे। फोटोग्राफी का शौक तो हम सभी को बहुत ज्यादा है ना, और अब जब से हमारे पास मोबाइल फोन आए हैं फोटोग्राफ्स क्लिक करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे क्या करें, चर्चा करेंगे रेनबो हेल्पलाइन में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी।

जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुओ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं।
1: अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं।
0: वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं।
1: अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं।
0: वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: QR कोड नू स्कैन करो, 5000 दा कैशबैक पाओ। वाह, फायदा ही फायदा।
4: फसिया। UPI पिन दाखिल करो, सिर्फ पैसे भेजन लई।
5: RBI कहंदा है,
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार, स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो गया है जी 1:37 ते प्रोग्राम दे विच अगली भैन साडे नाल जुड़ी है, कर दे इहनां नाल गल। हैलो,
2: हां जी।
1: हैलो, हां जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार मैडम, सत श्री अकाल।
1: हां जी, सत श्री अकाल जी। ती कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो तुसी?
2: मैडम मैं मलकीत कौर, पिंड ज्ञाना, जिला बठिंडा, तहसील चोरंडी साबू तो बोल रही।
1: मलकीत कौर जी, प्रोग्राम घर परिवार दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: हां जी, ते केड़ी गल साडे नाल अज सांझी करना चाहोगे तुसी?
2: मैडम मसालिया की गल चली जाती है, सुन रहे थी प्रोग्राम।
1: हां जी,
2: सारिया भैन आपके विचार दस रही है, बहुत वधिया प्रोग्राम है।
1: हां जी,
2: ते मसालिया नू असी ता पेंडू लोग है, पिंडा दे विच हत्था भी समान लिया के रख लेने है।
1: हां जी,
2: नहीं खराब हुंदा, उन्हां नू धुप भी लगाने है।
1: हां जी, समय समय
2: ते उन्हां दे विच, हां जी, उन्हां च लौंग लसन लाचिया वगैरा पा के उन्हां नू रख देंगे पैकेटां च बंद करके लिफाफिया च, ते फिर उन्हां नू ओहदे विच रख लेने है।
1: हां
2: जी, मैं थोड़िया नी बटा सकते, असी तां 15-15-20 किलो पटाने।
1: हां जी, हां जी,
2: ते हजे तक भी साडे ओह जिहियां ही पईआं हैं, बिलकुल वधिया पईआं हैं, संभाल के रखियां हैं।
1: हां जी,
2: कोई भी चीज है कम करांगे, जे हम कमरे ही ला लो, जे आप इन्हों की साफ सफाई ना करांगे, इन्हों की झाड़ा पूंजी ना करांगे, फिर जीव जंतु महीने
1: च जीव जंतु भी बहुत तरह के, जिम्मे सप सपोले ए चीजा मच्छर मक्खी बहुत हो जाते ने।
2: हां जी, हां जी, इन्हों की संभाल वास्ते सारा कुछ ही सा, झाड़ा झाड़ लो, आ झाड़ लो, आ ठीक कर लो, धुप लवाओ, मंजा ते ला लो, पेंडू है मंजे भी, मंजा की लोड़ है, मंजा भी धुप लगो।
1: हां जी, जरूर लगानी चाहिंदी आ।
2: हां जी,
1: हां जी, ते प्रोग्राम घर परिवार दे विच तुसी कॉल कीती ओदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी, ते सानू वधिया सुझा दित्ते ते ओदे लई वी तुहाडा धन्नवाद जी।
2: ठीक है जी मैडम।
1: हां जी,
2: ओके।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हम तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। राष्ट्रीय महिला कमिशन NCW ने डिजिटल सशक्तिकरण अते उभर रही तकनालोजियां विच औरतां दी वध तों वध भागीदारी नूं उत्साहित करन लई जलंधर विच अपनी यशोदा AI पहलकदमी की शुरुआत की है। यह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI साखरता प्रोग्राम जो कि कमिशन पिछले 4 साल तो चला रहा है, कमिशन के चेयरपर्सन विजय रिहाटकर वालों कल जलंधर की अपनी फेरी दौरान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य औरतों की डिजिटल शमूलियत नूं वधाउण अते साइबर सुरक्षा, डिजिटल निजता ते सुरक्षा ऑनलाइन अभ्यासां दे खेतर च सशक्त बनाउणा है तां जो इन्हां नूं AI साखरता नाल लैस कीता जा सके। NCW ने नशीले पदार्थां दी दुरवरतों दा खतरा, औरतां ते बोझ नूं उजागर करना विषय ते एक प्रोग्राम भी आयोजित कीता। इसने औरतां ते परिवारां उत्ते नशीले पदार्थां दी दुरवरतों दे भावनात्मक, समाजिक ते आर्थिक प्रभाव अते रोकथाम ते दखल अंदाजी लई इक लिंग संवेदनशील भाईचारा संचालित पहुंच नूं उजागर कीता। उन्हां कहा,
1: पंजाब की बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अच्छा काम भी कर रही है। पर जब मैं यहाँ पे आई, मैं सबको मिली तो मैं ये भी देख रही हूँ, शूरवीरों का हमारा पंजाब है, गुरुओं का हमारा पंजाब है जिसने इस देश को दिशा दी है। ड्रग्स के साथ जो एडिक्शन है वो भी तो परिवारों को तोड़ रहा है। पर मैं ये भी कहूंगी कि हमारे देश की जो बेटियां हैं ना, जो माँ है, जो बहन है, इनके पास बहुत बड़ी ताकत होती है अपने परिवार को संभालने की। हमने आज उनको निवेदन दिया कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है आपके अपने प्यार की, समर्पण की और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ खड़े रहने की। हम वो अपने बच्चों का साथ दे।
0: उन्हां औरतां दी सुरक्षा ते नाल संबंधित मुद्दयां दा मुलांकण करन लई सीनियर जिला प्रशासनिक अधिकारियां नाल इक समीक्षा मीटिंग दी वी प्रधानगी कीती। उन्हां कहा कि औरतां दी सुरक्षा सिर्फ एक भलाई एजेंडा नहीं, इह चंगे शासन दे सब तों मजबूत उपरालियां विचों एक है। बाद विच चेयरपर्सन ने स्वय सहायता समूहां दीआं करीब 100 औरतां नाल गलबात कीती ते इक महिला कॉलेज विच शी सर्व्स प्रोग्राम दा उद्घाटन कीता तां जो नौजवान औरतां नूं हथियारबंद सेनावां च करियर दी पड़चोल करन वास्ते उत्साहित कीता जा सके। खेडा वतन पंजाब दियां दा चौथा एडिशन 5 सितंबर तो बठिंडा च शुरू होवेगा ते 29 नवंबर तक चलेगा। अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इस संबंधी जानकारी दिंदिया मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन्हां खेडां च 10 लाख तो वध खिडारियां दे हिस्सा लैण दी उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों तो हिमाचल प्रदेश के उच्च इलाकों लगातार हो रही बारिश कारण पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ के मैदानी इलाकों पानी का बहाव शुरू हो गया, जिस कारण गुवांडी सूबे ते केंद्रीय शासित प्रदेश दोवां दे कई हिस्सों छड़ वर्गी स्थिति पैदा हो गई है। ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला च भारी बारिश ते पहाड़ियां तो पानी के बहाव ने यात्रियों लई मुश्किलां पैदा कर दित्तियां ने क्योंकि बहुत सारे खेतर पानी च डुब गए ने। उधर आनंदपुर साहब के कुछ हिस्सों च पानी लगातार वध रहा है। तख्त श्री केसगढ़ साहब ते आले दुआले के इलाकों के सामने सड़कां पानी नाल भरिया हुई ने। पंजाब के सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस जो आनंदपुर साहब विखे प्रभावित खेतरां दा दौरा करके स्थिति का जायजा लै रहे सन, ने लोगों नूं दरिया के किनारियों तो दूर रहन ते बेलोड़े बाहर ना निकलन की अपील की है।
2: कल देर शाम तो काफी भारी बरसात हो रही है श्री आनंदपुर साहब के नंगल के इलाके दे विच। प्रशासन सारा इस वक्त नजर बनाई रखे हुए, फिलहाल कोई चिंता की गल नहीं है, पर फिर भी मैं खुद भी फील्ड दे विच है, किसी नूं किसी भी तरह की कोई भी जरूरत इमीडिएटली दस सकते, मैं खुद मौके पर हाजिर होऊंगा। दूजी गल यह है कि आप जी नूं बेनती है कि आपां खड्डा तो जिहड़ी नहरां तो दरियावां

0: हेलो, देखते हैं जी अगले श्रोता कौन जुड़े ने अपने नाल। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन थे, कित्थों गल कर रहे हो?
1: ज्ञान सिंह पेंटर डेटवर कर रहा है। मैं
0: ठीक है जी, ज्ञान सिंह जी, अपनी फरमाइश दसो।
1: अपना अंदाज फिल्म में दर्शन ये अपना यही जिंदगी है सब परेशान ना। अच्छा
0: ठीक है जी, प्रोग्राम दे विच कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: देख लिया जी। एक अगले श्रोता साढ़े नाल कौन जुड़े ने। हेलो,
1: श्रीकाल
0: सत श्रीकाल जी, कौन थे, कित्थों गल कर रहे हो।
1: जी, मैं पिंड गलपति गोरा सिंह चहल जी।
0: ठीक है, अपनी फरमाइश दस दो।
1: छोले फिर ला दो कोई भी गीत जी।
0: ठीक है जी, प्रोग्राम दे विच कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी।

0: देखते हैं साढ़े नाल अगले श्रोता कौन जुड़े ने। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन थे, कितों गल कर रहे हो?
1: जी, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ जी, बेंच सिंगर बठिंडा तो। थैंक
0: अशोक कुमार जी, थोड़ा प्रोग्राम विच बहुत बहुत स्वागत है। अपनी
1: यू
0: फरमाइश
1: मैम।
0: दसो जी।
1: हेलो,
0: हेलो, अपनी फरमाइश दसो जी।
1: जी राजा हिंदुस्तानी सुनकर गाना सुनना था।
0: ठीक है जी, सुनो थोड़ी फरमाइश ते अगला गीत।
1: बिल्कुल सामने, हाँ
0: ठीक
1: हाँ
0: है, थैंक।

0: देखते हैं जी अगले श्रोता की फरमाइश लेके पहुंचे ने अपने को। हेलो, हाँ
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो?
1: अर्जन सिंह, पिंड माल्यवाला, जिला फिरोजपुर जी। सत श्री अकाल ज्योति मैडम।
0: सत श्री अकाल अर्जन जी, तुहाडा प्रोग्राम विच बहुत बहुत स्वागत है। कि
1: शुक्रिया मैडम। कुमार
0: अपनी पसंद दा गीत दसो, केड़ा सुनना चाहोगे अज?
1: सानू तिलका दी वाच नाल शिकवा करो ना, शिकायत करो, पर मैं मोहब्बत तुम्हें सी करूं।
0: ठीक है जी, आ गया तुहाडी रेडियो सेट ते गल।
1: ओके, थैंक यू।

इस प्रोग्राम विच तकनीकी साथ समूह टेक्निकल स्टाफ वालों मिलिया प्रोग्राम दे निर्माता श्री बलजीत शर्मा। इस दे नाल ही मैनू ज्योति नू प्रोग्राम इत्थे ही समाप्त करन दी दिओ आग्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री

0: स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ 2:30 ਤੇ 29 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं। गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: प्रोग्राम चल रहा है सुरीली दोपहर ते स्टूडियो दी घड़ी ते समय है जी 2:42:46 ते प्रोग्राम दे विच शामिल करदे आ अगले व्हाट्सएप स्नेहे भेजण वालियां नूं। पिंड फुलों मिठी तो राम सिंह टेलर, लक्ष्मण सिंह टेलर, कुलजिंदर सिंह, मनप्रीत कौर, जसप्रीत जस्सी ते इन्हां दा पोतरा गुणताज वीर सिंह ते दोता सुखमन वीर सिंह पिंड हुशनर तो ते पिंड लालबाई जिला श्री मुक्तसर साहिब तो नछत्तर सिंह ढिल्लों, तेजा स्वामी पिंड गिदड़वाहा तो ते बाबू सिंह ढिल्लों पिंड रामे तो ते इन्हां दे नाल बलदेव सिंह मिस्त्री ते पिंड बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो क्रियांश बगड़िया, जोगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गर्मा बगड़िया, रजत मनीष चौधरी ते राम प्रताप, ज्योति सुमन ते मनीषा ये सानू लिखते ने मिडू खेड़ा मुक्तसर साहिब तो। चकला बाजार समाणा शहर तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता राणी जिंदल, पप्पू समाइल खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल ते इन्हां दा पूरा खुशदिल परिवार। ते पिंड फूलों मिठी तो ही अगला सानू वट्सअप स्नेहा आया है जी, हरजस सिंह ढिल्लों, दीप इंद्र सिंह ढिल्लों, भोला सिंह बैनीवाल, बलकौर सिंह सिद्धू ते तारी पेंचरावाला, इन्हां दे नाल जीत सिंह कौलतर ते पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तो जगदीश राय गर्ग, अंजना राणी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग, विकास गोयल, नीतू गोयल ते पिंड बुरज मानसा नेड़े मौड़ मंडी बठिंडा तो राम सिंह तगड़, भिंदर कौर तगड़, कमलप्रीत सिंह तगड़, काकू जसल पिंड शेखपुरा, गुरजीत नंबरदार मानसा कला, मलकीत मान धर्मेका मानसा कला।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल, और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: अगे सानू व्हाट्सएप स्नेहा प्राप्त होया जी नथू राम शर्मा अनाज मंडी कालियावाड़ी जिला सरसा हरियाणा तो, ते पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह ते मंगलाबेन शाह ते इन्हां दे नाल राजेंद्र जी शाह पिंड वडिंगखेड़ा श्री मुक्तसर साहिब तो, भोला सिंह सिद्धू भूरा सिंह गहलोत वकील सिंह चाहिल पिंड संतपुरा राजस्थान तो, टेक सिंह सिद्धू पिंड लैपो गैरी तो, गुरमीत सिंह ते पिंड वजीदपुर भौमा तो, बलजीत सिंह ते बलाकी पत्ती पिंड मौड़ खुरद जिला बठिंडा तो, जगजीत मट्टू रणजीत कौर मट्टू जिमी फौजी कीरत संधु तापुरा मल ते इन्हां दे नाल ने श्री फतेहगढ़ साहिब तो राम

0: सखी सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को, सभी सखियाओं को, सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों को
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
1: हाँ।
2: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए, और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले।
1: कोई समझौता नहीं करना
2: बिल्कुल।
1: है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश
2: हाँ,
1: मैंने
2: कह दिया। तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि अरे उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे। और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती, लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है
2: बिल्कुल,
1: कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसे धुलाई पे जाएगी।
2: हाँ।
1: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
2: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: आप धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता। और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका, अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है। आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है

0: तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी-कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं, उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चलें जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस।
0: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में ही बात होगी और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है, इस बारे में ही बात होगी।
1: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या पसंद है आपको साड़ी
0: भाई,
1: पहनना?
0: महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना। वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता
1: जी
0: है, लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और
0: इतने
1: सावन,
0: सारे प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी जाती
1: चुनी
0: हैं।
1: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन
1: जी
0: आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं।
1: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है, तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में, जो पीछे परिवार में बच्चे
0: हाँ,
1: रह गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है। कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज
0: बिल्कुल,
1: भेजिए।
0: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास, उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पर जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ
1: चलिए
0: में।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये तन्हा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है, और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटोज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी, वो
1: जी
0: हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है, और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डैगोरियोटिप ये
0: हाँ
1: आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई
1: बिल्कुल,
0: हमारे।
1: तो ये लुई और जोसेफ निप्स, इन दोनों ने मिलके इस टाइप को, ये
0: ये जो
1: डेकोरेट,
0: आविष्कार है
1: हाँ
0: हाँ
1: ये जो आविष्कार है, इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए, आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है ना
0: बिल्कुल सही
1: हम
0: कहा।
1: सबके ही जीवन में।
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं, और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है, और सदियों में ये विकसित हुआ जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं, और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को,
0: जी
1: उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई
0: बिल्कुल
1: अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
0: जी सही कहा दीपा आपने।
1: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां आप रहते हैं, या आपका कोई, आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहां आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो,
0: जी
1: तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते हैं।
0: और देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं, और ये बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है।
1: बिल्कुल, और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत से बहुत

0: ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर है फोटो खींची हुई वो बहुत सुंदर लगती है उसके
1: बिल्कुल।
0: सामने।
1: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था,
1: हाँ
0: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे,
1: जी
0: और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास लोग भी बहुत कम रखने लगे
1: जी
0: हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या
1: एक अन
0: वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको
1: हाँ
0: लेते हैं वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
1: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं कि इंतजार करना पड़ता था ना,
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो 4-5 फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आपसे सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
0: बिल्कुल
1: कई बार तो कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहां वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वहीं रह जाएगा।
0: हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है, तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं, फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी, ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो,
1: हाँ
0: तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी हैं। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नजदीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं, तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं। जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था, पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए
0: और
1: सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लेकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना
0: जी
1: तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में।
0: जी
1: उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर,
1: आता
0: पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से, कहीं फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते
1: और ये
0: थे।
1: देखो एक और मजेदार संदेश आया है। हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसे कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये
0: चलिए
1: जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते
1: चलिए।
0: हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं विविध भारती पर। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की। और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं, 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे।
0: जी
1: तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी, और करीब 4,000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इन्हों इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी, और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है।
1: बिल्कुल
0: इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा

0: एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल। ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें भी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो, मानवता को लेके बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप है।
0: बिल्कुल, आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता। तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी दिल है, उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें हैं ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

भरी दुआ का पानी, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार कर

मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ।

0: करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता
1: हूँ। और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं,
2: बिल्कुल।
1: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
2: बिल्कुल।
1: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
2: तो कोई बात नहीं, इस दफा आप लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है, तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजें और ढेर सारे तस्वीरें खींचें, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
1: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है, तो जेवर अलग तरह के
2: अलग
1: होंगे।
2: होगा
1: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है, तो
2: जी।
1: अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिया में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं, वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने हुए होते
2: पैटर्न
1: हैं
2: जो बने होते हैं जी।
1: ना। और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है, उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
2: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
1: हाँ
2: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी,
1: हाँ
2: है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे,
1: हाँ
2: वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
1: जो
2: जो
1: पारंपरिक चीजें हैं,
2: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
1: जैसे
2: और
1: आपने पहना,
2: लाल
1: जो
2: कलर की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
1: आपने पीले कलर का अगर बेस है, तो उस पर कुछ नारंगी या हरे रंग की
2: हाँ
1: धारियां होंगी। अगर
2: बिल्कुल।
1: गुलाबी बेस है साड़ी का, तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना
2: बिल्कुल
1: देता है।
2: खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा

0: बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
1: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर ये बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है। और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून

0: गुजरात महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो
1: अभी तो
0: जॉर्जेट
1: बहुत
0: कॉटन
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी और
1: जी।
0: अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि ये टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं, और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है, यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो
0: हाँ
1: लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियां, ये ताजा डिजाइन आजकल खूब वहां के मार्केट में आप देख सकते हैं।
0: सिर्फ साड़ियां ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया के, जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुशल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
1: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है,
0: इसके अलावा
1: यहाँ तक कि
0: पगड़ियां भी
1: बांधने।
0: पहनी जाती हैं,
1: जी जी
0: पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
1: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी, और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरी तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
0: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीजें होती है ना, उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है, या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और जिसे आहार बना रहे पेट में।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोस कर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें। 1 कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें, और थोड़ा सा चाहे तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी से देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगोकर उसे भी निचोड़कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर, आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ नहीं, इकट्ठा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट से आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं
1: जी,
2: और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
2: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
2: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। When I was in कश्मीर
1: जी,
2: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
2: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
2: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी
2: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे।
1: जी
2: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी।
1: जी
2: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
2: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्पचर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा,
2: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रैना, जिन्होंने कभी किसी से संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह का कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिसपे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दे उसके कुछ हिस्से तो
2: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
2: दोनों जहान तेरी

0: क्या बात है।
1: दोनों जहान तेरे।
0: क्या खूबसूरत आवाज है। इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और
0: आहा
1: मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने।
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे
0: हाँ
1: वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
0: जी
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य की एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
0: कश्मीर का
1: का
0: है।
1: रहने
0: जी
1: वाला है,
0: जी
1: या ये चेन्नई का रहने वाला है,
0: जी
1: या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
0: जी
1: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
0: जी
1: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
0: जी
1: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूं।
0: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
1: हमारे
0: बने हैं।
1: शिक्षक रहे
0: और
1: हैं,
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
1: बिल्कुल
0: धन्यवाद
1: बिल्कुल
0: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
1: बिल्कुल,
0: रहा है।
1: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब, ये श्रोता हूं। मैं
0: जी
1: सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
0: एट जी जी
1: सुनूं,
0: जी
1: या एक और है 107. जैसे जैसे आकाश में
0: आप
1: गोल्ड
0: जहां
1: है।
0: जहां शहर
1: हाँ
0: बदलेंगे हमारे नंबर्स
1: जी
0: बदल
1: जी
0: जाते हैं
1: नंबर्स
0: कि
1: बदले
0: आपको
1: जाते
0: अलग
1: हैं,
0: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
1: लेकिन
0: देता
1: मुझे
0: है।
1: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
0: जी
1: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
0: जी
1: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब, प्रसारण होता है।
0: जी
1: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है। लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
0: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
1: हम
0: अच्छा
1: हमेशा
0: चलता
1: साथ
0: जाता
1: हैं,
0: है।
1: हम
0: जी
1: हमेशा साथ,
0: तो अब हम वापस आपके
1: मेरे
0: जीवन
1: बचपन
0: पे
1: में
0: आ
1: चलते
0: जाते
1: हैं। फिर
0: हैं।
1: मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
0: जी
1: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था, जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
0: जी
1: अब भी है वो, जहाँ
0: जी
1: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
0: जी
1: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे, जो सेट डेकोरेशन करने
0: सेट
1: के
0: लगाने
1: लिए,
0: के लिए।
1: लगाने
0: जी
1: के लिए। और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहां, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी

0: हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव
1: जी
0: था हमारा।
1: जी
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह की वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग ना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था जे
1: हाँ
0: एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया। छोटे
1: जी
0: छोटे थे
1: जी
0: तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या
0: हाँ
1: करता है। तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
1: जी
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16 17 18 साल के थे, 16 17 साल, 15 16 17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया।
1: सिखाया।
0: तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा
0: फिर हमारे वहां ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
1: जी
0: मैं प्लेस करते रहता हूँ, रेडियो प्लेस
1: हाँ हाँ
0: जो होते थे। तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम
1: पास हो
0: उसमें
1: गए
0: प्लेस करते थे। तो
1: जी
0: वहां से कुछ ना कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ,
1: हाँ
0: ऐसी शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था जब कोई ना
1: जी
0: कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे। तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे,
1: हाँ
0: जाते थे, कभी वो लाते थे। तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से
1: जी
0: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था कि
1: भाग पड़े
0: मैं
1: थे या निकल पड़े थे? अच्छा
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया।
1: जी
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था, और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा
1: संगीत भी
0: था।
1: सीख रहे
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ। तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1 2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की
1: जी
0: रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहां पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम,
1: जी
0: बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहां हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
1: एटीन
0: था।
1: ट्वेंटी इयर्स का एज
0: हाँ,
1: होगा, अठारह
0: उन्नीस
1: बीस
0: बीस
1: साल
0: साल की उम्र थी।
1: हाँ
0: तो वहां मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहां पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहां भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं
1: जी
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ।
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे
1: नहीं
0: साथ में हमेशा रहा है,
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना,
1: हाँ
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते
0: रहती
1: थे
0: थी।
1: जी जी
0: मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो
1: जी
0: जाता
1: लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था।
1: हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग

0: ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताए तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे 1 मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या
1: जी
0: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूं,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट और सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
1: जी
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे
1: जी
0: मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख, उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ
0: ऐसा नहीं
1: ये
0: हो। मुझे
1: प्रश्न
0: कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी,
1: जी
0: आपके जैसे हमारी आवाज कैसे होगी।
1: हाँ
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज वो नेचर से मिलती है।
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, जो संगीत
1: खरज का
0: की,
1: रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा?
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ
0: मंदर सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस
1: अच्छा
0: मांगती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप
1: हाँ
0: नीचे की तरफ
1: सा
0: सा
1: के
0: नी
1: बाद
0: हा
1: नी।
0: नीचे
1: जी
0: आए
1: जी
0: आ आ आ, नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं।
1: अच्छा
0: हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू, आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है,
1: जी
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के, आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि चूंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा है, मैंने
1: जी
0: बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है, और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ, आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको, जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
1: खुद
0: सकते हैं,
1: खुद के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या,

0: और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं काफी लोग इंस्टीट्यूशन से, वो वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: वहां पहुंच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: वायु।
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते हैं।
0: हाँ
1: एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पता
1: जी
0: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है। जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है,
0: रखा है मैंने प्रोग्राम का। और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूं, उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया। उसमें
1: जी
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूं,
1: जी
0: क्योंकि
1: स्वागत है।
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया हो दुनिया।
1: कितना खूब गाया आपने, बेहतरीन। चलिए,

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था।
0: 1986 में,
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं
0: तो
1: उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से
1: जी,
0: आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है। तो
0: अच्छा।
1: ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहां दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष।
0: जी जी
1: अब वो
0: जी
1: है
0: जी
1: नहीं,
0: जी जी
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी। तो मैंने उनका पता ढूंढा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय।
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
0: जी
1: थे
0: जी
1: वो, बहुत ही
0: बिल्कुल।
1: अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
0: यस
1: बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास, जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
0: अप्लाई
1: वो
0: कर दिया।
1: दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे, नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
0: हाँ
1: मेरी आंटी घर पे रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बता दी नहीं, कोई कोई
0: भूल
1: मैसेज मिलता नहीं
0: गई
1: था।
0: भूल गई।
1: लेकिन हाँ, वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रुक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय,
0: अच्छा।
1: आई थिंक दैट वाज फॉर कुछ साउथ के लिए था। उसमें एक मॉडल थी राधा, और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
0: जी
1: बहुत बड़े
0: अच्छा। जी जी
1: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
0: जी
1: ठाकुर।
0: जी
1: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रुक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं। तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ वो, मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो MS सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
0: बड़े
1: लोग थे।
0: लोग थे।
1: तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर

0: रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा।
1: जी
0: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
1: जी
0: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
1: जी
0: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
1: हाँ
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
1: जी
0: उसमें किरदार था जीवन का,
1: जी
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जिससे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है, और वहां सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में, पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के का, तो मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोनिश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ, सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया,
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती, तो
1: जी
0: अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने, उस
1: इतने
0: जमाने में
1: सारे
0: एटीज,
1: सीरियल्स कर
0: हाँ
1: लिए, गाने तो याद रहते हैं ना।
0: हाँ
1: अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
0: जी
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाइएगा
1: जी
0: ना।
1: ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा
0: मैं
1: देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना।

0: चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
2: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं, तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट
1: खुशी
0: रहे
1: है
0: हैं आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी
0: जी
1: बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी थी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया
0: होगा।
1: था। तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था, देव साहब से। वो उनके असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट थे, तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए
0: जी
1: कश्मीरी कम हेयर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
0: आप
1: करते
0: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
1: थे
0: समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
1: मैं
0: दे।
1: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
0: जी जी
1: था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त, अव्वल नंबर।
0: जी
1: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर क्रूज में भी था,
0: जी
1: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था,
0: जी
1: उनका आनंद डबिंग भी था,
0: जी
1: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बांद्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे,
0: जी
1: लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहां गया था, तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा
1: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
0: उसी
1: इट इज
0: लूप
1: नॉट
0: में
1: मुझे
0: फंस
1: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था।
0: जाएंगे।
1: उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है, जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ ए पुलिसमैन। तो
0: जी
1: मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूं उनकी फिल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा। इस
0: ओह
1: फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं, ये
0: जी
1: मेरी अब मैं अगर को कहूं गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था। मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में। नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक
0: जी
1: शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी
0: जी
1: आवाज और मेरे पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
0: कर
1: रोल विल
0: सकते हैं।
1: सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा

0: मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
1: गया।
0: हाँ, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, आपका कोई होना चाहिए, देर
1: जी
0: हैज टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं, कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी
1: जी
0: का नाम नहीं ले रहा,
1: जी
0: लेकिन किया तो है ना हमारा,
1: जी
0: मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई
1: जी
0: गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है,
1: जी
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था,
1: जी
0: मैं शोज भी करता रहता था,
1: अच्छा
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग। और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
1: जी
0: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
1: सिंगिंग दोनों
0: करते थे, तो ऐसा ही हमारा
1: करते
0: भी
1: थे।
0: कुछ वैसा ही था।
1: जी
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में, कुछ मैंने वीर ज़ारा, मुझे
1: जी
0: यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहां उन्होंने मुझे, आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहां ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा, म्यूजिक आता है वो, ये तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया,
1: जी
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती हैं
1: थोड़ा
0: आप,
1: सा आप
0: बताओ
1: गा
0: तो।
1: के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे।

देखिए यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रैना चलो अब तुम्हारा ही शॉर्ट्स होने हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, हाँ पंकज जी रैना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने हैं, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1940।

0: जियो हॉटस्टार पे लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी,
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें हैं
1: आपको आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी, अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं, वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीजों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
1: जी
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है,
1: जी
0: आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है
0: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें
1: जी।
0: ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो
0: भाग
1: हारते हैं, टूटते हैं, तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है,
1: जी
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है,
1: जी
0: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना।
1: जी
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन जन्म।
1: जी
0: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
1: जी
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं,
1: जी
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
1: जी
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी, तो वो जन्म जन्मों के कर्म होते हैं।
1: जी
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको
1: जी
0: सक्सेस मतलब गाने का मौका
1: बिल्कुल
0: मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
1: जी
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा,
1: जी
0: इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं,
1: जी
0: बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में, तो और आपने उसके लिए कुछ वैसा सेक्रीफाइस नहीं किया होगा ना, तो
1: जी
0: होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन।
1: बहुत मेहनत करनी
0: टूटना
1: पड़ेगी,
0: नहीं होता है।
1: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था,
1: जी
0: पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था।
1: जी
0: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो
1: दिग्गज
0: स्टॉलवार्ट्स हैं,
1: गायक
0: मतलब
1: जी
0: इतने
1: बात
0: बड़े दिग्गज
1: जी
0: जो मेल सिंगर्स हुए हैं,
1: जी
0: उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक, और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छे हैं,
1: जी
0: उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो
1: जी
0: भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे,
1: अच्छा जी
0: दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और
1: जी
0: 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे, और
1: अच्छा
0: मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को।
1: अच्छा
0: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है,
1: जी
0: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला
1: हाँ
0: अंतरा भूपेंद्र

0: गया है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी,
1: जी
0: बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी
1: जी
0: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो
1: जी
0: मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात
1: क्या
0: दिन,
1: बात है
0: मौसम फिल्म का गाना
1: जी।
0: उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं,
1: जी
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे,
1: जी जी
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था। तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो
1: जी
0: मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से आया
1: जी
0: हूँ। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर। फिर
1: मिलने की
0: ऊपर
1: चाहत ने मिला
0: नहीं,
1: दिया,
0: मैं मिलने गया ही था उनसे, तो
1: पर
0: देखा तो वो अंदर से
1: लिफ्ट में
0: आ,
1: ही मिल
0: लेकिन
1: गए।
0: वो नीचे ही मिल गए।
1: जी।
0: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने,
1: जी
0: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं।
1: जी
0: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू पे, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
1: जी
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं।
1: हाँ
0: तो मैंने पहला गीत यही गाया था
1: तो
0: जो मैं
1: जरा
0: दो लाइन आपको सुना के, एक अकेला इस शहर में रात में और

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का।
1: जी
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड
0: इन
1: करता
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहां चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बंबई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: या नहीं।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫੀਡ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ।
2: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने लिए चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: ता अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: आकाशवाणी FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, 20 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੋ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਅਰੋੜਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: जी श्रोतियों, तुसी हुणे सुन रहे सी प्रोग्राम गल्लां चो गल दे तहत सिलसिला खुंड चर्चा।
0: गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं।
1: जी श्रोतियों,
0: वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बन।
1: अज का विशा सी निक्कियां निक्कियां गल्लां। माफ करना जी, हुणे तुसी सुनिया प्रोग्राम गल्लां चो गल दे तहत सिलसिला, ते अज का विशा सी निक्कियां निक्कियां गल्लां, ते प्रोग्राम पेश कर रहे सन गुरदीप कौर। श्रुतियो, कहिंदे ने कि इंसान कदे भी कल्ला कामयाब नहीं हुंदा, हर किसी की जिंदगी विच कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर हुंदा है जिसने कदे किसी समय तुहानू हौसला दिता, सही राह दिखाया, जा औखे वेले साडे नाल खड़ा रहा। एक ऐसा इंसान जिसने तुहाडी जिंदगी विच अजिहा रोल निभाया, ते वो कोई भी हो सकदा है, दादा दादी, माता पिता, अध्यापक, भरा, भैन, जीवन साथी, दोस्त, जा फिर कोई ऐसा शख्स जिसने तुहानू अगे वधन दी हिम्मत दिती। ते फिर तुसी उसनू धन्नवाद कहना ना भुलना, ते उसनू दसदे रहो कि वो किन्ने महत्वपूर्ण ने तुहाडी जिंदगी विच। कई बार साडे दो मिठे बोल ही किसी इंसान लई सब तो वड्डा तोहफा बन जांदे ने। अपने प्यारियां दी कदर करदे रहो, उस नाल गलबात करदे रहो, अते इस दे नाल ही तुसी अपने जिहड़े जानकार ने, प्यारे ने, जिन्हां ने तुहाडी जिंदगी विच महत्वपूर्ण रोल निभाया, उन्हां नाल मिठे बोल बोलदे रहो। ते आओ सुणदे हां इक गीत।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं। गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
1: तो आज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
3: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 6:19 ਅਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਕੁਝ ਪਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।

0: मेडिकल, CSM, BCA, BBA, BLib, PGDCA, PGD in Yoga, PGD in Banking अते Insurance, PGD in Web Design, MA English, Hindi अते Punjabi, MCOM, MSc Maths, MSc IT, MBA, MCA, MSc Fashion Designing अते 4 साला BA BEd ITEP विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला हॉस्टल, कॉम्पिटिशन सेल, NEP अनुसार 3 अते 4 साला UG प्रोग्राम्स, हर वर्ग ले स्कॉलरशिप स्कीम्स, वधेरी जानकारी ले SST गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171 94 95 75 848 98 720 65 150।
1: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउण लई चाहिदा हुंदा है।
1: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 78-379-63-306 ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ aarfm.bti@gmail.com। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ 78-379-63-306।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउण लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी वी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
3: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: हेलो जी, स्रोतियों साडे नाल जुड़ गए ने जी, एक होर स्रोता गल करदे आ उन्हां दे नाल। हैलो हैलो हैलो
5: हाँ जी, हाँ जी बोलो।
4: हाँ जी हाँ जी भाई जी, तुहाडी आवाज नहीं सी आ रही जी पहला,
5: हुण आ रही है ना।
4: हाँ जी हाँ जी, ते दसोगे जी साडे स्रोतियां नूं तुसीं कौन बोल रहे हो ते कित्थों बोल रहे हो जी?
5: हेलो, सत श्री अकाल मैडम।
4: सत श्री अकाल जी,
5: मैं अर्जन सिंह बोल रहा, पिंड महले वाला, जिला फिरोजपुर।
4: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
5: शुक्रिया मैडम।
4: हाँ जी, ते भाई जी कम कार की करदे हो जी?
5: जी खेती बाड़ी दा काम है मेरा जी।
4: ठीक है जी, ते किवें है फसल बाड़ी?
5: हाँ जी बहुत वधिया, कृपा है मालक दी।
4: ठीक है जी, ते अज गीत केड़ा सुनोगे जी प्रोग्राम
5: दे? सॉन्ग ला दो इंद्रजीत, इंद्रजीत निक्कू दा तेरे बिना यूं अधूरी आ।
4: ਅਧੂਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
5: ਓਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
4: ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: ता अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਮਸਕਾਰ।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
4: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
3: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
4: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
3: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
4: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
3: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
4: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: जी
4: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
3: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
4: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
3: जी।
4: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
3: जी।
4: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
3: जी।
4: धीरे धीरे ये शब्द पूरे

0: साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
1: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
0: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
0: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
1: जी,
0: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
1: जी,
0: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोताओं, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
1: जी,
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
1: जी,
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी,
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।

0: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
1: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
0: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
1: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
1: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
1: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
0: हाँ।
1: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टानें मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे।

0: और आगे।
1: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
0: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
1: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
0: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
0: हाँ?
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
0: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
1: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
3: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
1: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
0: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
3: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
0: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
0: अच्छा,
2: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो।
0: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
3: चरैवेति, यही तो जीवन है।
1: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया।

सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाघ

0: की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे ये पानी का नल?
2: हाँ,
1: अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे, हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी।
2: पानी।
1: एक बार फिर कोशिश करो। हाँ,
3: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
1: मिसेस केलर
4: जी,
1: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
4: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: हेलेन हेलेन शाबाश हेलेन मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं
2: अरे नहीं नहीं मिसेस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन
2: मिसेस केलर हेलेन
1: बोल सकती है

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: जी श्रोतियो, तुसी हुणे सुन रहे सी NCERT वल्लों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। तुसी सुन रहे हो FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा है 8:29:30 ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: जी श्रोतियो, आसाराम, आसा सिंह मस्ताना जी की आवाज़ तो बाद तुसी जड़ा अगला गीत सुनोगे उन्हां लई फरमाइश भेजी है जी सानू जगप्रीत सिंह गिल, सुखमणी कौर गिल, खुशी कौर गिल, परवीन कौर, सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा, तो गिदड़वा तो मनजीत तनेजा, राम गोपाल, परवीन तनेजा, मनोज तनेजा, सीमा पायल, अर्चना स्नेहदिल, हिनाशा ते कैरवी ने। इस दे नाल ही सानू जिहड़ा खत प्राप्त होया पिंड ढड्डे तो ज्ञान सिंह ढिल्लो, अमरिंदर सिंह यूके, बलजिंदर कौर यूके, जसगुण कौर यूके, जसकीरत सिंह यूके, उपकार सिंह सिद्धू, जसकीरत सिंह भारू, हरबंस सिंह ढड्डे, तो इन्हां सारिया की रली मिली पसंद ते सुनदे आं अमर नूरी दा गाया ए गीत।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: जी श्रोतियो, अगले गीत लई जिहड़ी सानू फरमाइश पहुंची है जी, वह लिखण वाले ने जी पिंड खुईआं सरवर तो रमेश चावला राइजल, ते श्री गुरु नानक नगर तो बठिंडा तो वीना राणी तेजस, आशा राणी मंजू बाला, हरगुण निमल, मनोज कुमार बेगराज ते मोहन लाल। इस दे नाल ही इस गीत लई सानू वट्सएप स्नेहा प्राप्त होया जी अशोक कुमार, अनीता राणी, दीपक बांसल, अजीत रोड बठिंडा तो, ते वड़िंग खेड़ा तो लिख रहे ने जी मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, ते पिंड लालबाई तो नछत्र सिंह ढिल्लो, ते तेजा स्वामी गिदड़वा तो बाबू सिंह ढिल्लो, पिंड रामे तो बलवीर सिंह मिस्त्री। ते इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते सुणदे आं इह गीत।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं।
1: अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं।
0: वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी आकाशवाणी बठिंडा दे प्रसारण, ते हुण समां हो रिहा जी हिंदी विच खबरां दा। आओ सुणदे हां खबरां।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
4: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक

0: पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया।

0: वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
1: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई।

0: है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन

0: देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says Centre will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating US military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India seal a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए।
4: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीज प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
3: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations, and strengthen the transport of key commodities including coal and iron. Mr. Vaishnav informed that the Cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard.
3: ये प्रोजेक्ट पूरे बिहार के लिए।
4: द प्रोजेक्ट इज बिकमिंग अ मेजर लाइफ लाइन फॉर द एंटायर बिहार। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोनबरसा ऑन द नेपाल बॉर्डर एंड पासेस थ्रू सीतामढ़ी एंड मुजफ्फरपुर। इट विल क्रिएट अ कंप्लीट ट्रांसपोर्ट आर्टरी विच विल बेनिफिट बिहार फॉर मेनी इयर्स। इट इज एन 83 किलोमीटर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट अंडर विच द एग्जिस्टिंग रोड विल बी अपग्रेडेड इनटू अ 4-लेन हाईवे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,591 करोड़ रुपीज।
3: 591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो।
2: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure.

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि

0: था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे आर डी बर्मन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में चाइना टाउन फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

प्यार से मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान बल बल, उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार से मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान, दुआ करो मिले तुम्हें।

चाइना टाउन फिल्म के गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली। जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

0: श्रोताओं नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आँखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है।

0: सब गोलमाल है।
1: उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूंछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर

या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति, इन अतिशयोक्तिपूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते।

0: किसी से ना कहना,
1: किसी से ना कहना,
0: किसी से ना कहना,
1: किसी से ना कहना।
2: जिस तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा है या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोट पोट होते नजर आते।
0: काहे छटके

0: उत्पल दत्त का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता।
1: सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का
2: कलाकंद
1: खिलाऊंगा।
3: मगर सर इतनी सारी मिठाइयां।
1: अरे बेटा नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा।
3: पुलिस की मार,
1: पुलिस की मार।
0: उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफ्री कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में शामिल हो गए।

थिएटर की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचे।

लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को यह एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं।

0: और नशे में क्यों न झूम झूम जाए।
1: उत्पल दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आज केर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेड, दूस्वप्नार नगरी, ए बार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस न हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे।

उत्पल दत्त का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपने फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ही फिल्म जॉय बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का।

उत्पादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं।

सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते, जैसे द गुरु फिल्म में सितार।

दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे।

जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।

अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी। लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे।

0: 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आंखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे।
1: ये

दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में, वो साहू जी बने नजर आए फिल्म थी बरसात की एक रात, द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना, तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया।

दत्त के सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड।

अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णु प्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं।

19 अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं जीवन जीने की कला।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आँखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त पर।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: सब गोलमाल है।
1: शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता।

0: अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं। जुगनू और चमकने लगे हैं। चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला। हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

जब चांद, तारे, चांदनी, नदी, पहाड़, हवा और रात की खामोशी किसी प्रेम कहानी के साथी बन जाएं, तो फिर दूरियां भी मोहब्बत को रोक नहीं पाती। चांद आज भी हर रात निकलता है, हवा आज भी खिड़कियों को छूती है, थपथपाती है, जुगनू आज भी अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, और कहीं ना कहीं दो दिल आज भी उसी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने की दुआ करते हैं। रात का सन्नाटा तब डरावना नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ लगता है।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। तारे उस रात प्रेमी युगल की अधूरी बातें सुनते रहे, जुगनू उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमाते रहे, नदी उनके प्यार की कहानी अपने साथ बहाती रही, पहाड़ उनकी मोहब्बत के गवाह बने खड़े रहे और हवा हवा हर पल एक दिल से दूसरे दिल तक प्यार का एहसास पहुंचाती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में बंध चुके थे अब।

रात और गहरी हो चुकी थी। भीगी भीगी चांदनी खिड़की से होकर कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी वो सुंदर सी लड़की कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, सुन रहे हो ना? मैं आज भी उसी खिड़की पर बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो पहाड़ों को छूती हुई जंगलों से गुजरी और सीधे नदी किनारे जा

पहुंची जहां वो लड़का बैठा था। हवा ने उसके गालों को धीरे से छुआ। लड़का मुस्कुराया, बोला, हाँ, तुम्हारी खुशबू आज भी इस हवा में बसी है। रात का सन्नाटा अब खामोश नहीं था, उसमें दो दिलों की धड़कने थी।

उस रात चांद उनका आसमान था, तारे उनकी दुआ थी, हवा उनका संदेश थी, नदी उनकी आवाज थी, पहाड़ उनके सहारे बन गए और भीगी हुई चांदनी उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाह। उस रात चांद चांदनी बरसाने लगा था, तारे दुआ बन गए थे, जुगनू नदी के किनारे से उड़ते हुए हवा के साथ उस खिड़की तक पहुंच गए। नदी की हर लहर पुकार रही थी, दो दिल एक दूसरे के लिए ठहर गए थे। कमरे के कोने में बैठी वो प्यारी सी लड़की की आंखें अब चमक रही थीं। उन आंखों में उम्मीद की चमक थी, हाँ, कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दूरी खत्म होगी, यही चांद, यही तारे, यही हवा हमारे मिलन के गवाह बने।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और

फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
0: ढलती जाए रात।

پڑھ کے بے خودی ہنسی گے سکھ لے کھل کے پھر زلفیں

0: हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखूं।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
4: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
3: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
5: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।